0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: आश भी स्पिगोल डेली लो फिट रहो।
1: महिलाओं देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और बताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
2: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार।
4: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
5: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
2: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार।
4: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
7: 100 FM।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: कूल किंग।
10: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
11: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
12: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
13: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
14: बंद करो ना ढक्कन।
15: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
16: This program is brought to you by
12: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC।
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
17: And तूफान है हर जीत की पहचान है।
3: And
18: फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: And
15: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: And
19: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरतीब देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
3: ये पैगाम
9: حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
21: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
22: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
23: ہماری ذمہ داری ہے.
24: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: Like us on facebook.com/FM247365.
25: FM247365.
26: FM100.
27: 31 سال FM100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
28: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
2: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार.
4: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
0: This program is brought to you by
5: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
6: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: And
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है। मगर अब नहीं, इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: कूल किंग,
6: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
8: बंद करो ना ढक्कन।
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
10: This program is brought to you by
5: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
0: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: And तूफान है, हर जीत की पहचान है।
12: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: And स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
13: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
10: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
2: हाशमी इस पर डेली लो फिट रहो.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
1: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
2: तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान.
7: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
10: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
11: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ कब्र चला गया मैं नहीं बचा.
12: फिर उन्होंने वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया.
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
14: FM 247365. किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
15: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगे.
14: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
16: हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
15: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
14: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
16: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
15: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
16: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
15: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

अच्छा जहर देख के पीता देखी पीता, इश्क सोच के कीता देखी कीता, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी, वे बुलाया

0: आज भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: एक दुनी दो दो दुनी सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
6: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, फिनटेक, हेल्थ टेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
2: एक दुनी दो दो दुनी सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹5,000 डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
9: बंद करो ना ढक्कन।
10: स्वीप क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
12: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड तूफान है हर जीत की पहचान है।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: एंड स्वीप क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
15: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
16: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
17: FM 247365।
18: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: 100 FM.
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
10: Ye pegham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश। कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: एंड
10: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: एंड
2: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
12: FM 24/7/365 FM 24/7/365
13: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
14: Only music, no RJ talk.
13: This is FM 100.
15: Come on.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
2: Ek duni do do duni chahi intikhab ke inamat dhai hata.
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
4: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
6: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदाद व शुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल के शिकार हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 68% आबादी 30 साल से कम उम्र, जबकि 27% 15 साल से कम उम्र है। यही नौजवान आज एक फैसला कुन मकाम पर खड़े हैं, जहां वो मंशियात के खतरात का सामना भी कर रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन महफूज और तरक्याती याफ्ता पाकिस्तान की उम्मीद भी है। ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि जिंदगियां, खानदान और मुस्तकबिल हैं, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस जंग में सबसे मुअस्सर हथियार आगाही है। वालदैन, असातिज़ा, मीडिया, तबकात और नौजवान, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को मंशियात के खतरात से महफूज रखें। आज इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम आगाही को अमल में बदलेंगे, उम्मीद को ताकत बनाएंगे और मिलकर एक मंशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर करेंगे। आपका एक फैसला जिंदगी बना सकता है और एक नशा सब कुछ मिटा सकता है। फ्यूचर की रेस में नशा शॉर्टकट नहीं, डेड एंड है। 26 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है कि जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Your location for maximum music.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: कूल किंग।
4: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: FM247365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: चार मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: FM 24/7 365 FM 100
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है
2: और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है।
1: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
5: facebook.com/fm247365 FM 247365. This is your

0: your location for maximum music.
1: Cool King.
2: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
4: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, जहां स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: थिंकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/fm247365
4: fm247365. Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
1: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: And स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
4: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 5 से जोर डेली लो फिट रहो।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: अगली बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।

0: आश भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रिइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
2: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: And
6: तूफान है हर जीत की पहचान है.
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100. 31 سال FM 100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
13: Music has no name.
14: Music has no name.
13: Music has identity.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है।
0: This program is brought to you by
5: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी।
3: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: And स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
8: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
0: And
9: Toofan hai ye, har jeet ki pehchan hai ye.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: Evening drive time.

0: चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
6: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर। Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: आज भी इस गोल डेली लो, फिट रहो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
1: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
0: अभी बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
1: इन्वेस्ट पार्क?
2: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
1: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
2: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
4: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: This program is brought to you by
6: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: एंड
9: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
10: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: 100 FM
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure. But as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness. But drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham Hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
12: Listeners tell us about FM 100.
13: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
14: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
12: Number one music station.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले.
0: And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
6: Cool King.
7: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
8: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
9: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
10: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
11: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
6: कूल किंग.
9: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल.

0: किराए के रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।

0: बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: Let's celebrate
6: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: This is your music.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: This program is

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
4: Assalamualaikum Pakistan.
5: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
6: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azan-e-Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: डेली लो, फिट रहो।

0: मैं इतना पीछे पीछे क्यों रहती हूँ?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Cool King.
2: रिद्धि का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।

0: मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: डेली लो, फिट रहो।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
14: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
15: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by Tufaan Hai.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैज कैश.
0: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
4: ब्रॉडकास्टिंग लाइव
5: अक्रॉस द नेशन
4: द हार्टबीट ऑफ पाकिस्तान. दिस इज FM 100.
6: आई लव इट.
7: All right, friends, coming in with Christy Burke, the original version, with the Lady in Red.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैजकैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैजकैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
4: Broadcasting live across the nation, the heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
5: 100. I love it.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
4: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365. It's not just the music, it's the way we bring it on. Music on Wheels with TJ Kosala.
8: Hello, friends. So, welcome back to the Avisa Radio 100 Pakistan. This is one of my personal favorites because it speaks a lot about me. I would say it's my kind of signature track. You want to know what DJ Crisola is all about? Then you got to listen to this.
9: DJ Crisola.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैज कैश।
7: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Us on facebook.com/fm247365 fm247365.
13: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: This is your music.

हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब। कैसे मिजाज और कैसी तबीयत? सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ। और जनाब अगर दिल चाह रहा मैसेज करने का तो क्या चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जी, मैसेज करने का बहुत ही सिंपल तरीका दोबारा मैं बताता हूं, बार बार बताता रहता हूं ताकि आप बस मैसेज करते रहें और मैं मैसेज पढ़ता रहूं। के एच आई स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। नदीम अंसारी हमारे साथ प्यारे से इंजीनियर अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारी पूरी टीम उस्मान मोहम्मद अली और बहुत सारे। अच्छा जनाब, दिन है आज फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन जनाब मैं आपको सुनाता हूं 90s के बड़े हिट गाने, अर्ली 2000 के पॉप जो गाने होते हैं वो सुनाता हूं। और इस स्टाइल को भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं कि हाँ यार वो गाने जो एक दौर में इतने हिट थे अब वो कहीं से भी नहीं सुनाई देते। चलें एक दिन आप प्ले करते हैं तो पुरानी यादों में वो भी चले जाते हैं। पुरानी चीजें मैं बहुत सुनाता रहता हूं। मंडे वाला शो तो आपका फेवरेट होता ही है तो जनाब बिल्कुल मैं ट्रैक सुनाऊंगा लेकिन बहुत ही मुख्तसर सी प्यारी।

0: प्यारी सी ब्रेक के बाद।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Active, yummy,
7: adorable, zabardast.
6: Ready hai pyaar to suno yaar.

YG, welcome back. Sunray FM 100 और साथ साथ messages भी 9 to 11 रात 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक आपका और मेरा साथ. Right now 9:20 हो गया है time और आगाज करेंगे इस खूबसूरत track से. सज्जाद अली, क्या बात है इनकी.

राइट जी, वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिल्म 100। और बिलावल भाई ने सबसे पहले मैसेज कर दिया गिजरी से, अयाज भाई आपको और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, सर क्या हाल चाल है और आज का दिन कैसा गुजरा? भाई जैसे सबका गुजर रहा है वैसे हमारा गुजर रहा है अच्छा मजे में। एसी में बैठता हूँ तो सही लगता है, एसी से बाहर निकलता हूँ तो बहुत गर्म। चांडियो जान का मैसेज आ गया, अद्दा चांडियो जान छाला बाबा। गुलचन इकबाल कराची से, कोई खास बात नहीं की, बस अपना तारुफ कराया चांडियो भाई ने। अयूब आफरीदी कहने, नाइस अयास, खुश रहे महनूर मुश्क सबा गुल को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। मुल्तान से गयासुद्दीन बलबन भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। पूरी टीम को और सब सुनने वालों को सलाम दे दिया भाई उन्होंने, वालेकुम सलाम जनाब। और संजीदा भी हमें सुन रही हैं, संजीदा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? यानी भाई मिजाज अच्छे हैं आज, पता नहीं क्यों मौसम बेहतर लगा। अच्छा जी, क्या बात, शायद दिल का मौसम अच्छा है, क्या शायराना गुफ्तगू कर दिया आपने भाई, बहुत आला। और कलाम भी पसंद आ गया, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और शामिल करेंगे वाइटल साइन को, उनका ये गाना आज जब सुने आपको अच्छा लगता है, एंजॉय करें। मैसेजेस करें, किया चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 36365।

0: Thursday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
5: Active,
6: yummy,
5: adorable, 7.
7: Say I've got a crush on you.
6: Ye pyaar to suno yaar.

वाइज जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और जनाब मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर और मैसेंजर पर भी हमारे मैसेज पहुंच रहे हैं। मैसेंजर पर अगर मैसेज करने का दिल चाह रहा हो तो अयाज अहमद की आईडी पे आप जा सकते हैं और वहां मैसेज कर सकते हैं। नौरीन तौसीफ हमें फैसलाबाद से सुनती हैं और उन्होंने वहां से मैसेज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम अयाज, तबीयत कैसी है? अयाज भाई तबीयत कैसी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बहुत सारी दुआएं और सब समातों, हसीन तरीन समातों के लिए भी सलाम दुआ भेज दी उन्होंने। संजू बहना, रुबाब, जरीन, नसरीन और मुश्क और प्यारे भाई अयूब को खसूसी सलाम, ढेरों दुआएं। अयूब भाई सलाम आ गया और सबको भी पहुंच गया, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब अयाज भाई थैंक्स, चांडियो जान गुलशन एक बात से आता चांडियो वेलकम जनाब वेलकम। चांडियो भाई कुछ और भी लिखे, क्या करते हैं आप? अच्छा जी मुश्क लैला में मैसेज करिए, अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल है? अभी ज्वाइन किया है, तुम मिल गए जबरदस्त। बस अब मैं मिल गया हूँ, मैं आपको जबरदस्त किस्म के गाने सुनाने वाला हूँ। कल भी इंतजार किया, आदत डल रही है। अच्छा जी यार मैं क्या करूँ, काम वाम भी होते हैं ऐसे कि बस मत पूछो। अच्छा जी कहनी दिल चाहता है, जब भी आप दिल खोल के मैसेज करें, जितने मैसेज करें मैंने पढ़ते रहना चुपचाप। अच्छा जी कैच अयाज, अयाज भाई इफ यू कैन, ये मूवी याद आ गई। साहबजादा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साहबजादा बड़े गौर से मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसा ना कुछ गलत निकल जाए मुंह से, बड़े नाजुक नाम होते हैं बात। अच्छा जी गाने पसंद आ रहे हैं फुल टाइम। एक और बड़ा जबरदस्त ट्रैक और बहुत ही प्यारा आर्टिस्ट शहजाद मुगल, यकीनन 90s के जो लोग हैं वो जब इस तरह के गाने सुनते थे तो उनको जरूर जानते होंगे, बहुत ही कमाल आर्टिस्ट। अमेरिका शिफ्ट हो गया वो। अच्छा ये जितने आर्टिस्ट थे पुराने सारे अमेरिका चले गए। अली हैदर को देख लें, शहजाद मुगल भाई को देख लें, आमिर सलीम को देख लें और कौन, अभी बाकी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। काफी सारे दोस्त जो हमारे अमेरिका शिफ्ट हो गए, मजे हैं भैया, लेकिन इनके गाने कमाल थे। ये खास तौर पर ये ट्रैक और इसकी वीडियो, एक आदमी जो है क्लिफ्टन ब्रिज पे वो चलता हुआ जा रहा है पैदल, तो ये वीडियो ही अजीब सी लगती थी हमें, लेकिन गाना कमाल। आज मुझे बड़े दिनों बाद ये नजर आया और क्यू शीट में मैंने शामिल किया। एंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: Alright janab, kya kya khazane the jo ke yahan se shift ho gaye hain. जबरदस्त, बस यूं ही बहुत ही जबरदस्त शायरी. और संजीदा जी बिल्कुल सही कहा, बहुत ही इनको पसंद आया. और इसके अलावा गयास ने याद दिलाया कि पिछले हफ्ते दो रुपए भी पूरे नहीं, कुछ पैसे कम थे. कह रहे हैं कि पेट्रोल कम किया है, सोच रहा हूँ कमेटी डाल लूं. बेटा मैं तो आज का सोच रहा हूँ कि आज क्या सीन होगा, कोई है कोई इरादे विरादे इनके कि नहीं. वैसे अगर इसी तरह कम करने तो फिर तो मैं कहूंगा ना ही करें तो अच्छा, इतना एहसान करने की जरूरत क्या भैया. अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं सुंबल जी को और कादिर भाई को सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं याज भाई अल्लाह पाक नौरीन सिस्टर को और महनूर को सेहत अता फरमाए. आमीन आमीन भाई, बिल्कुल जनाब. और अगर सुन रहे हैं तो भाई मैसेज करें क्या सूरत हाल है. किडनी का ऑपरेशन था मेरा ख्याल से, अल्लाह करे सब खैर खैरियत से होगा, इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे. महनूर कहने भाई आपको, लाला को और मुश को, सलीम मेमा को भी और नौरीन को, संजू को, जरीन को, भी पूरा चैप्टर लिख दिया आपने भाई, सबको सलाम हो गया, सब में सब आ गए. अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं आयाज भाई महा और गुलमानों को अपनी पसंद का कोई सॉन्ग डेडिकेट कर. डन हो गया बॉस, थोड़ा सा इंतजार करें अभी मैं, बल्कि ये वाला ट्रैक जो है नेक्स्ट वाला वो मैं डेडिकेट करता हूँ. अच्छा जी, रमजान पठान तुम किधर थे इतने दिन से. अयाज भाई जब आप बिलावल भाई का मैसेज रीड करते हो तो हमें अच्छा लगता है. बिलावल भाई का एड्रेस तुम दे सकते हो, बाबा गिजरी में रहते हो, गिजरी में जाके जोर जोर से पुल पे आवाज मारो बिलावल. ऐसा ना हो पुलिस पकड़ के ले जाए, तुम बिलावल को इतनी जोर से पुकार रहे हो और वो भी जो है चौराहे पे. ऐसा नहीं करो रमजान भाई, बस इतने जज्बात जो है ना ठीक नहीं होते. सलाम सर अयाज, सिक्वेंसर बैंड का आए, मेरे बड़े फेवरेट है, बहुत फेवरेट सॉन्ग यादें बीते दिनों की. अच्छा फीन, मैं वैसे रखा हुआ मैंने, तसल्ली रखे आप, थोड़ी सी देर में प्ले करता हूँ. लेकिन अभी जो गाना प्ले करने वाला हूँ, मेरे बहुत प्यारे से दोस्त, मेरे प्यारे से भाई, और जब आते हैं अमेरिका से कोशिश करते हैं कि मैं अपने शो में उनको बुला लूं, अली हैदर द ग्रेट, और स्पेशली इनका ये ट्रैक मेरी तरफ से आप सबको और अय्यूब आफरीदी की तरफ से महागुल और गुलबानों के लिए.

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
8: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
9: FM 24/7 365
10: Active, yummy, adorable,
11: zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

Right, जी, वेलकम बैक. सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और साथ साथ मैसेजेस का सिलसिले जारी है. और मिसेज फारूक, वालेकुम अस्सलाम. सॉरी लेट हो गई मैसेज करने में, कोई ऐसी बात नहीं. मिसेज फारूक खुश रहे आप? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है. और थोड़ी बिजी थी नौरीन सिस्टर को. वालेकुम अस्सलाम, सदा खुश और सलामत रहे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब, महानूर कह रही है आप सबकी दुआओं से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हूँ. चलो जी, ये अच्छा हो गया, माशाल्लाह. मानूर खुश रहे आप, जजाकल्ला आप सबकी दुआओं का. चले जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बिलावल भाई, आपको जवाब मिल गया इसका. अच्छा जनाब, अयूब आफरीदी भाई क्या जबरदस्त शेर भेजा इन्होंने. कह रहे हैं बात छोटी सी है पर कहना जरूरी है. बात छोटी सी है पर कहना जरूरी है. जिंदगी मेरी है पर आपका होना जरूरी है. भाई वाह वाह वाह वाह. इसी बात पर ये गाना जो है ना, आपकी तरफ से मैं किसी को डेडिकेट कर देता हूँ. और वो है कैसे मैसेज आप लोग करें कि चार्ज पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636 पर.

जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर. और बिलावल भाई ने बात बड़ी अच्छी. अच्छा, मैंने कल मैच देखा आराम से. मैं जरा शूट वूट से फारिग होके फ्री होके जब मैंने टीवी ऑन किया तो अजीबो गरीब सूरत हाल थी. वन साइड ही मैच लगा मुझे, इंग्लैंड और इंडिया का. कह रहे सर, इंग्लिश टीम ने फोर्थ T20 मैच में इंडियन टीम को जिल्लत आमेज मेरे ख्याल से इसलिए जो पिछड़ा वाला था जिसमें 76 पे ऑल आउट कर दिया, वो जिल्लत. और ये उसका थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन. बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस. और जितना पाकिस्तानी टीम को जो है बुरा कहते रहते हैं, तो देखिए आप क्या रिजल्ट निकल रहा है उनका. अयाज अहमद भाई, आपको और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. सलीम मेमन बिरयानी वाला, अरे क्या कहने बिरयानी वाले भाई, कैसे हो तुम? बिरयानी वाला जो लगाया ना तुमने, मुंह में पानी आ गया भाई. साथ में रायता वाला भी लगाओ, तो रायता और सलाद दोनों, और अगर कोई ठंडी बोतल हो वो भी साथ में पूरा ऐड कर दो पूरा. एंड में मीठा भी अगर तुम्हारा पसंद आए तो. महानूर कहनी, वाह वाह क्या जबरदस्त सॉन्ग, अच्छा जी क्या बात. अच्छा जी, गाने पसंद आ रहे हैं संजीदा जी को भी. और मिसेस फारूक, क्या आपने एक पोयम जो है हमें भेज दिया, नजम जो है. हमारे बचपन, हमारा बचपन थोड़ा अलग था, बड़ी तवील नजम है वैसे, मैं अलग ही था वैसे वाकई. मैं क्या के हाल है तोड़ा सरकार, गर्मा गर्म चाय आ गई है ठंडे मौसम में. स्टूडियो तो ठंडा होता ना भाई, बाहर गर्मी हो लेकिन स्टूडियो ठंडा है हमारा. चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी. ओए होए होए होए. अच्छा जी, तुफैल संजरानी साहब के हवाले से ना लोग कुछ उल्टी सीधी खबरें सुना रहे हैं. बड़े हमारे बहुत ही जबरदस्त सिंगर हैं. आज मैंने गाना उनका क्यू शीट में रखा खास तौर पर, तो भाई माशाल्लाह वो सेहतियाब हो रहे हैं आस्ता आस्ता. अल्लाह उनको जिंदगी दे. और उनके बारे में गलत गलत जो है ना इत्तला देना बंद कर दें आप. आज मैं उनका गाना भी प्ले करूंगा तो बहरहाल. और उरुसा जी, वो बड़े दिनों से नहीं आ रही, मैसेज भी नहीं कर रही, तो उनका मुझे पता चला, उनके बड़े भाई का. अफसोस हुआ. और हमारी चाची ने खासतौर पर मुझे मैसेज भेजा, मैं चाहता हूं वो भी जरा सुने.

0: चाची जी ने मैसेज भेजा, मैं थोड़ी देर में जरा ढूंढता हूँ, लेकिन फिलहाल जरा मैसेज जिस पे मैं तवज्जो देता हूँ जरा ढूंढ के लगाना पड़ेगा, इतने सारे मैसेज में मिक्स भी हो जाते हैं। लेकिन चाची का मैसेज इतना अच्छा था, मैं चाह रहा था जरा ऑन एयर ही इसको जरा हम कर दें। अच्छा जनाब, इसके अलावा रिहान हमें मैसेज कर, रिहान भाई कैसे हैं आप? ठीक है अयाज भाई, जब भी आते हो दिल खुश कर देते हो। अच्छा बाबा, दिल कैसे खुश? हालांकि मैं तो सिंपल सादा सा शो करे जा रहा हूँ, गाने सुना, मेरे ख्याल से गाने पसंद आ रहे हैं, उस पुराने वक्त में तो नहीं लेके जा रहा हूँ, 90s के दौर में जब वो MCC चार्ट और सारे ये चीजें आती थी यार, क्या लेवल था यार, मजा आता था वैसे, इंतजार भी रहता था। अब तो वो खत्म हो गया सारी चीजें, लेकिन फिर भी चलो शुक्र है हमने वो टाइम देखा है, और ये भी देख रहे हैं, ये भी अच्छा है ऐसे। अब म्यूजिक जरा आसानी से आपको मिल जाता है, पहले तो जरा इतने नखरे उठाने पड़ते थे, पैसे जमा करने पड़ते थे, CD खरीदनी है, कैसेट खरीदनी, पहले तो कैसेट का दौर था, फिर CD, और कैसेट से पहले LPs का भी दौर था, काले वाले जो रिकॉर्ड, LPs नहीं समझ रहा क्या, काले वाले रिकॉर्ड जो होते थे पुराने वक्तों में, लोग अक्सर फ्रिस्बी भी खेलते थे, क्या जबरदस्त साउंड है उसकी। सच बताऊं तो मुझे उसका साउंड आज भी बहुत पसंद है। अच्छा जनाब, टाइम चेक और एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 10 PM।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: FM 24/7 365 FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
5: एक्टिव यमी जबरदस्त, तो सुनो यार।

0: जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और जनाब चाची की आवाज को आज शामिल करते हैं और उस सखी के भाई के लिए हमारी भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। दुनिया का ये एक है कि तो तकलीफ दे लमा, लेकिन जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है। तो बहरहाल उरूसा दिल छोटा मत करें। और चाची ने भी आपके लिए बहुत कुछ जो है ना कहा है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं चाह रहा हूँ जरा ये ऑन एयर भी आप तक पहुंच जाए।
1: अस्सलाम वालेकुम अयाज बेटा, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से मेरा बच्चा? मुझे पता चला, मुझे रयास ने बताया कि अरूसा के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अरूसा बहुत रो रही थी, और भी मुझे दुख हुआ जाहिर है, क्योंकि मैं गुजरी हूँ इस तकलीफ से, तो मैं समझ सकती हूँ। अरूसा दिल छोटा ना करे, अल्लाह ताला को उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मफरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। सबर करो, अपनी फैमिली को भी समझाओ, तुम तो समझदार हो बहुत बेटा। हम कितना भी रो लें, कुछ भी कर लेना, जो चीज गई वापस तो आएगी नहीं ना, क्या कर सकते हैं सिवाय सबर के? आप बताए कुछ कर सकते हैं? मेरे पे कितनी जिम्मेदारी आ गई है पता है आपको, मैं घर की बाहर की, ऐसे मेरे पे इतनी जिम्मेदारी आ गई है। मैं कभी ऐसा सा पेपर वर्क ना मैंने कभी, मैं बता नहीं सकती कि मैं, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी, इतना काम मेरे पे आ गया। यहाँ से क्लियरेंस, वहां से क्लियरेंस, वहां से क्लियरेंस, मुस्तकिल जब से आज तक मैं इन्हीं चक्रों में बस लगी हुई हूँ। कितने मसले हैं ये सब, तो क्या कर सकते, और जो चीज गई वो तो गई, बस जो खला पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। सबर का अजर भी बहुत रखा है अल्लाह ने, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बस जितने मेरे लिसनर कॉलर है जो मुझे याद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया चाची, और मैंने सोचा कि आप तक ये भी मैसेज पहुंचा दूं। बहरहाल जनाब, इसी का नाम है जिंदगी। और देखिये यार, हमारे इतने प्यारे से सिंगर, उनके लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं। तो फैल भाई, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, आमीन बोले भाई सारे मिलके। और उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनका मैसेज मैंने अभी सुना, फेसबुक के ऊपर आ गया है, और माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, पहले से काफी बेहतर है। जब मैंने उनकी हालत देखी थी तो यकीन में यार, ये आर्टिस्ट हमारे बेचारे टेंशन भी बहुत है, ये भी है चक्कर। तो बहरहाल जी, उनको भी अपनी दुआओं में तो फैल साहब को जरूर याद रखें। कादिर बख्श बलोच का भी मैसेज आ गया, आपको और सुनने वालों को सलाम। बिलावल भाई और संजू जी को भी सॉन्ग डेडिकेट कर दें। ठीक हो गया बॉस, ठीक हो गया। तो जनाब, तो फैल साहब का ये खूबसूरत सा ट्रैक मैं आप सबको डेडिकेट कर देता हूं।

अच्छा जनाब, और बहुत तारीफें कर दी हैं, ये किसकी बोले, कोमल रिजवी की, संजीदा जी ने। संजीदा जी, कोमल जी तो हैं ही नो डाउट, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट और बहुत अच्छी सिंगर के साथ साथ वीजे भी रही हैं। वीजे उनके साथ हमने वीजे जंक्शन आता था, वीडियो जंक्शन के नाम से, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड खातून है। अच्छा जनाब, बिल्कुल संजीदा जी, बहुत अच्छे, कमाल के बच्चे, बिल्कुल यही तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है। मिसेस फारूक, आप बताएं, कोई नया कोई है चक्कर तो मुझे पता चले। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने भी बढ़ते हैं। गाने इतने सारे रह जाते हैं, बातें मैं इतनी करता रहता हूं। अच्छा जी, नींद आती नहीं सारी सारी रात, ये गाने सुन सुन के हुए हैं हम सब बड़े।

वही जनाब सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आप लोगों के पहुंच रहे हैं के एचआर स्पेस टेक्स्ट करते हैं सेंड कर देते हैं 3636 पर। अच्छा जनाब अयाज भाई मैं FM 100 1998 से सुनता हूं। सलीम बिरयानी वाले सरकार क्या बात है क्या कहने, बिरयानी भी साथ बन रही होती होगी साथ में रेडियो भी और गाने भी, ऐसा ना हो कि तवज्जो गाने पे और बिरयानी का बेड़ा कर। सलीम भाई ऐसा ना करना, तवज्जो जो है ना बिरयानी पे रखा कर। बिलावल कह रहे सर मेरी शादी ना होने के बारे में लोग पूछते हैं, मैं तो कभी माइंड नहीं करता। बेटा उसकी 45 ईयर थी जिसने गोली मार दी ना बार बार पूछने पे। तुम जब 45 के हो गए फिर जब लोग पूछेंगे बेटा तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तो तुम्हारा दिमाग में भी कुछ सवाल इस तरह के आएंगे कि मैं क्यों नहीं गोली मार रहा। यह मलेशिया में फिर मत जाना, वहां पे लोग मार देते। अच्छा जनाब मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का, और संजीदा जी आप भी खुश रहे। लेकिन अब जरा एक बहुत अहम ऐलान करना है मैंने, और वो ये कि मैं मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन खालदा जी की है आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे खालदा, खुश रहें आप, बहुत सारी दुआएं और अच्छी जगह पे जाके खाना तुम्हें। गाड़ी में सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत बहुत मुबारक। और मेरी बहुत प्यारी सी भांजी जी सऊदी अरब से तशरीफ ला चुकी है, युसरा मैडम, प्यार से युसी कहते हैं उसको। एक तो हर पाकिस्तानी ना हर नाम जितना छोटा हो सकता कर लो, युसरा से युसी। शुक्र है लस्सी नहीं बना दिया, खाने पीने के भी शौकीन है, लेकिन युसरा कितना बाद बारोब नाम, लेकिन जल्दी में हम रहते हैं। युसी पानी तो ले आओ, लेकिन मैं तो युसरा ही बोलता हूँ। प्यारी सी क्यूट सी हमारी वेलकम कहेंगे कराची में, और इसी तरह खुश रहे और इंजॉय करते रहे, और इन दोनों को युसरा को भी और खालदा जी को भी एक खूबसूरत सा ट्रैक डेडिकेट करता हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, और गाना कैसे भैया, और वो है ऐसे

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: Here we go! Full volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud!
5: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच गए हैं और खालदा बाजी के लिए बहुत सारी विशेज आ गई हैं। मिसेस फारूक थैंक यू वेरी मच, उनका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक और हैप्पी बर्थडे लिख दिया आपने। और संजीदा जी कह रही हैं कि यार शेरों में थोड़ा सा मैं माठा हूं लेकिन फिर भी एक शेर भेज दिया मेरी बहन के लिए कि जलती शमाएं रोशन चेहरे, कामनी लड़ियां नाजुक सहरे, नरगिस बेला मोतिया लाला हर कोई शाद है ना, आज तुम्हारी सालगिरह है ना, देखो हमको याद है ना, अल्लाह नहीं करो मैं शर्मा रहा हूँ। खालदा बाजी के नाम राइट जनाब, खालदा बाजी खुश रहें। बर्थडे के गाने मेरे पास है नहीं वरना मैं बर्थडे वाले भी प्ले कर देता हूँ। अच्छा जनाब, मिसेस फारूक कह रही है कि आलमगीर साहब क्या टाइम था, मोहम्मद अली शिकारे क्या बात है, दोनों जबरदस्त। वैसे एक आप भूल रही हैं, नाजिया जुहेब को भी भूल रही हैं आप, और खास तौर पे ये ट्रैक भी खालदा भाजी आपको डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे।

इमेजिन आप सुन रहे हैं FM 100 है आज अहमद के साथ। और फूफा जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को, थैंक यू वेरी मच जनाब। और इसके अलावा असगर साहब भी हमें कॉल कर रहे थे, थैंक यू असगर साहब। नाइस सॉन्ग सुपर जरीनूर खुश रहो। अब्दुल करीम भाई का भी मैसेज आ गया, सलाम सबको। और अयाज भाई मेरा मैसेज आज आपने शामिल किया, अब्दुल करीम भाई का मैसेज शामिल हो गया भाई। काशिफ भाई हमें सुन रहे, काशिफ क्या हाल है मेरे दोस्त, ठीक हो खैरियत से हो। दिल इसकी तारीफ करिए फरीन शहजादी, फरीन जी बहुत शुक्रिया। फुल पार्टी सीन हो गया भैया।

बस जनाब, बस ये पसंद आ गया है, बीच में कहीं कहीं हम लगा लेते हैं। जोया जी भी आ गई है, जुहान जोया मैम और जुबैर को हाय कहना। जुहान जोया जी और जुबैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और इसी बात पर नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और वो है कैसे। चलिए जनाब, और मैसेज मैं आपको बता दूं कि है चाय स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकिम। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दे मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365
3: जना वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और विस इज फारूक। बहुत शुक्रिया गाने वाने पसंद करने का, इतनी सारी दुआएं देने का, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, डेडिकेशन आ गई है कि अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करने करना ना भूलिएगा यूसरा और खालाबाजी को। डन हो गया जनाब, डन हो गया जनाब। नेक्स्ट गाना आपकी तरफ से, दोनों को मैं डेडिकेट कर देता हूं। और वो है कैसे,

है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त ट्रैक, शफकत भाई की आवाज, फ्यूजन बैंड, और पुराने वक्तों में ये भी ले जाता है हमें। अच्छा जनाब, खालदाबाजी के लिए बहुत सारी जो है ना बर्थडे विशेज आ गई है। जरीन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, आलमगीर के गाने को बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद कर दिया। आपको मैं बताऊं, आलमगीर साहब का मैंने एक और ट्रैक भी रखा हुआ और वो भी कमाल गाना था यार, पुराने वक्तों में ले जाता है, बचपन की याद ये भी दिला देता है। हाय हाय, चेक करे, थोड़ा सा प्ले करता हूं।

ना जना सुन रहे हैं FM 100 और रानी हुसैन आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त प्रोग्राम रूसा और वहीद लाला के लिए बहुत सारी दुआएं। आमीन आमीन सुमा आमीन। संजीदा कह रही ये गाना नहीं सुना मैंने, शुक्र है तुमने भी कुछ मिस किया, हर चीज सुनी हुई होती तुम्हारी। ये भी पुराने वक्तों का बड़ा जबरदस्त ट्रैक था। अच्छा जनाब, और साथ साथ थोड़े थोड़े गाने वो जो आज मैं नहीं प्ले कर पाया वो प्ले करता हूँ मैं।

जनाब बिलावल कह रहे हैं सर गुड नाइट और छा गए हो भाई। साथिया जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रुबाब आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रानी। रानी क्या कह रही हैं? आयाज भाई गाने हो या ना हो आपकी बातें ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यार ये गाना भी अच्छा था जो आज मैं प्ले नहीं कर पाया, थोड़ा सा सुनाते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय। आई मिस यू जुबैर सागर, सागर पता नहीं क्या है, जुबैर सैड गाना सलमान खान का। तू बैठ, मैं शाहरुख खान का भी लगा, तसल्ली रख, शाहरुख अमिताभ सारे लगा देता, बस आप वेट करें, आप 5 मिनट वेट करें, मैं 2 घंटे में आया।

हाय हाय हाय, क्या बात है। और इसी के साथ ही इजाजत चाहेंगे। और क्या बात है जनाब अफरीदी साहब, अयूब अफरीदी, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट आपको भी, और संजीदा जी गुड नाइट आपको भी, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है तू, तेरी खुशबू और लिबास में मेरे और कमरे में रखी तेरी शर्ट जस्ट इन केस जाऊं।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM247365

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

वेलकम बैक, वाह वाह वाह वाह, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हबीबी, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक, और तीन बजे तक करेंगे खूब हल्ला ते गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की बात जारी करेंगे तो भी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूँ, आप देते हैं उसका जवाब, मगर उससे पहले करता हूँ मैं वार्म अप। लेकिन वार्म अप करने से पहले मैंने जो पहले पहले कहा वेलकम बैक, उसकी एक वजह थी, काफी देर से आज इत्तफाक से पहले आ गया था और मैं सीट पर बैठा हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं शो कर रहा हूँ, और शो स्टार्ट करते हुए वेलकम बैक कह दिया, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, तो लिहाजा कोई भी यानी कि किट ना लगाए इस हवाले से। और जनाब आप लोगों को करना है वार्म अप, तो वार्म अप के लिए पहला गाना एलो पढ़ो। ये ट्रैक जो है स्पेशली हम डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे प्यारे से समी को, क्योंकि समी को ये गाना बड़ा पसंद है भाई, अभी वो आया नहीं है मगर फिर भी हम कर रहे हैं एलो पढ़ो।

वेलकम बैक। ना जाने क्यों अरमा दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अरमान पूरे नहीं होते। जलते हैं अरमान, मेरा दिल रोता है। अरमान अरमान अरमान, हर एक के दिल में अरमान ही रहता है, कोई ना कोई अरमान। वैसे नाम भी होता है, यानी कि समझ रहे ना आप। खैर जी, गाना अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और सवाल, बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में आ रहे थे मेरे जब ये गाना चल रहा था। मैंने सोचा कौन सा करूं, मुश्किल वाला करूं आसान वाला करूं। आसान वाला कर देते हैं। हर घर में जो है, हम वैसे अक्सर बोलते हैं टीवी, टीवी देख रहे हैं। अब टीवी के फुल फॉर्म क्या है, टेलीविजन है। तो किसी जमाने में टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन ही होता था, और अब टेलीविजन कहीं नहीं। अब घर में जो है वो एलईडी लगी होती है ज्यादातर, ये बोलते हैं ना एलईडी लगी हुई है भाई। अच्छा, एलईडी से पहले एलसीडी लगी हुई है हमारे घर। तो अब हर घर में जो है वो एलईडी या एलसीडी जरूर लगी होगी। तो हमने जैसे मैंने बोला टीवी था। तो टीवी का फुल फॉर्म जो है वो है टेलीविजन। तो एलईडी और एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ये बताओ। ये है आज का सवाल। और आगे बढ़ते हैं। पहले आपके मैसेजेस की जानिब, क्योंकि मैसेजेस वाह वाह वाह वाह मोहब्बत है आपकी। सबसे पहले फीता गाड़े हमारे यूसुफ भाई पापोश ने करें, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर सिमरान भाई, खिताब गुल्लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को सलाम का नदीम भाई। ए खुदा, अपनी दुनिया में एक काम कर और लाहक, पता नहीं लिखा हुआ लाहक लिखा हुआ है, लाख आसान कर, लाख एहसान कर, ये या खुदा खुशी हलाल कर। वाह वाह वाह वाह यार, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ए खुदा, अपनी दुनिया में एक काम कर, लाख एहसान कर, या खुदा खुशी हलाल कर। अब हलाल खुशी और हराम खुशी में क्या फर्क है, सवाल आ गया इसे भाई दिमाग में ऐसा। हलाल खुशी और हराम खुशी में क्या फर्क है, वो खुशी जिसमें अल्लाह की रजा हो, बड़ा आसान लफ्जों में और यानी के समझदार वाले लफ्जों में ये मैं बता रहा हूँ, वो खुशी जिसमें अल्लाह की रजा हो वो हलाल खुशी, और वो खुशी इंसान की जिसमें अल्लाह की रजा शामिल ना हो वो हराम खुशी। खुश तो इंसान बहुत होता है, हाय हाय, और उसमें भी अल्लाह को याद करो, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, फुल टाइम ये चल रहा होता है, लेकिन वो है हराम खुशी। यानी कि समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे, मुझे तफसील बताने की जरूरत नहीं है। नदीम अख्तर भाई, आपको और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलीम मेमन बिरयानी वाला भाई। बिरयानी वाले कैसे हो? वैसे सलीम मेमन फालूदे वाले जो है वो अक्सर पूछते हैं आपसे कि भाई कहाँ लगाया हुआ है बिरयानी का दुकान या ढाबा, तो आप बताते नहीं है। वो कह रहे मैं आऊंगा, खाऊंगा, पैसे भी दूंगा, ये कह रहे थे। अब आप जब से आप उनने ये बात बोली हुई है ना, तो आपका नाम बिरयानी वाला पढ़कर मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है। और वैसे हकीकत बता रहा हूँ, अभी भूख लगने शुरू हो गई है। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और सीमा साइम, आय हाय, इतने अरसे के बाद सीमा कैसी हो? हाँ, सीमा साइम हो गई, हमारी तीनों सीमाएं, सीमा खान हो गई है, और तो ये तमाम मेरी बहनें फोन करती थी टेलीफोन। और आज जो है ये बात हुई ना यार, वैसे ये भी आप लोगों के ऊपर है, जो जिन जो कॉल्स करते थे, मैसेज कर दो यार, किसी से करवा दो यार, अगर नहीं करना तो कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाइयों, मैं मसरूफ थी इसीलिए आपका शो नहीं सुन पाई। कोई मसला नहीं, आप शो में कॉल क्यों नहीं लेते हैं? एक अच्छा सा सॉन्ग समी, इमरान भाई और सलीम, संजू, चाची,
ہما رباب عروسا نورین دوسی ویوب لالا ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیے. اپنے شو کے پرانے چاول کو بھول گیا, پرانے چاولوں کو نہیں بھولتا میں. آپ بے فکر رہے اس بات سے, ریحان آ گیا بھائی, ریحان ایوب لالا آ گیا یار, دس خان ایوب لالا. جانے جگر یہ ہیوی بھی خوش رہے, مانور مشک سبا گل کو, رباب کو, معلوم کو پیار بھرا سلام اور ڈھیر ساری دعائیں. لالا آج آپ سے بات بہت کچھ بات کرنے کو دل کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جگر سنجو سو گئی نہیں سوئی, اس کا وجہ یہ کہ میرا خوش کا میسج نظر آ رہا ہے, ابھی وہ اس طرف میں بعد میں جاؤں گا. لالا آپ کا انفارمیشن غلط ہے. انیس کہہ رہے ہیں کہ یہ کل کا ایس ایم ایس ہے, کل اس کی کا برتھ ڈے تھا, کل آپ ایبسنٹ ہو گئے تھے, آج اس کو وش کر دیں. یہ اس کون ہے انیس بھائی, اس کا کوئی نام ہے؟ نام تو بتائیے انیس صاحب, اسے تو میں وش کرتا ہی نہیں. نام بتائے بھائی نام. ایوب اپریدی بھائی کا ایک اور میسج آیا, مانور کو کامیاب آپریشن پر مبارک ہو, اللہ پاک مانور کو کامل صحت عطا فرمائے, آمین سم آمین. شکر الحمدللہ, مجھے نہیں معلوم تھا لالا آپ کی وجہ سے پتا چلا کہ ان کے آپریشن کامیاب رہا, یہ تو ویسے کل پتا چل گیا تھا کہ ان کو ہوش نہیں. تو خیر جی, ان کے لیے بہت ساری دعائیں. اب لالا آپ نے سنجو کو اگر یاد کیا ہے تو سنجو کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اور سنجو کو یہ گانا ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے, حالانکہ ہماری پیاری سی بہنا زرین نور نہیں آئی ہیں, ان کی جانب سے اور اپنی جانب سے سنجو تمہارے لیے گانا ہے. ایلو پڑھو.

0: Welcome back, Habibi. Beautiful track and I hope you all like it. And इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जानब और देखते हैं कौन है. सवाल जो मैंने आपसे किया है वो ये किया है कि LED और LED का दोनों का फुल फॉर्म क्या है. देखते हैं कोई जवाब देता है या नहीं देता. अच्छा भाई, सीमा साहिब का मैसेज हो गया था, लाला का मैसेज भी हो गया था और अनीस साहब का भी हो गया था. लाला बहुत सारे मैसेज करती है. लाला कह रहे हैं कि संजू अगर जिगर जगा रही तो है, जगा रही है तो ये उम्र रुबाब का कमाल है
1: कि वो आजकल चौकीदार बन गई है. जाग दे रो ए भाई, उम्र रुबाब अब चौकीदार बन गया है. लाला को कैसे पता है.
0: अच्छा जी, लो कॉम्पैक्ट

0: डिस्प्ले एंड लो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले। साहबजादा साहब, आपका जवाब आपने नोट कर लिया है, हम इसका ओके जवाब आपको बाद में देगा। अच्छा जी, सलाम की बात कर रहे हैं नदीम भाई, यूसुफ भाई बाबोच से, और तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची और उषा जी, के बी एच के एन टी एन ओ जी एच। ये क्या हो गया यूसुफ भाई, आपका पहले भी मैसेज में से मैंने पढ़ा था, द ग्रेट यूसुफ भाई। और जबरान यूसुफ जई साहब कह रहे हैं नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम जबरदस्त है, पख्तों का एक संदारा हो जाए तो क्या बात है भाई। लिसनर्स को और अयूब लाला को स्पेशल सलाम, अयूब लाला आपको बहुत सलाम आता है यार, लेकिन आपको जिस सलाम का इंतजार है वो अभी तक नहीं आ रहा है, क्या वजह है यार इसका बताओ यार। और एक इंग्लिश ट्रैक सुना दीजिएगा, सलीम बिरयानी। सलीम भाई आ गए में, ये अंग्रेजी में बिरयानी बन रही है भाई। सुनाएंगे सुनाएंगे। और अनीस कह रहे हैं भाई वेरी नाइस सॉन्ग, शो बहुत आला जा रहा है, आए लजीन ना करो। वाकई में सांजो का भी मैसेज आ गया है, जब हम इस तरफ आ गया है तो सांजो का मैसेज पढ़ेगा, और सांजो का मैसेज तो बहुत ही वाह वाह वाह वाह वाह, ये जबरदस्त किया संजू, नंबर डाले हुए हैं, नंबरों के हिसाब से ही पढ़ूंगा सब। हाँ भाई, अब पहुंचा हूं पहले पर जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू, और इंशाल्लाह खुशामदीद नदी माफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहें, बज़्म शायरी है, बज़्म शायरी वाला है यार ये तो मैसेज, मैं आज वाले मैसेज बन गया, बज़्म शायरी में तो मैं आया नहीं था संजू, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तो बज़्म शायरी में आया नहीं है, तो शायरी वाले ये मैसेज आपके हम जरूर पढ़ेंगे, अभी नहीं बाद में। अनगिनत दुआएं दी हैं उन्होंने, कहां गायब थे, अब लड़ाई करूं, आजकल बहुत फटे कर रही हूं मैं, बच के रहिएगा भाई, क्या बात है भाई लाला, सही कह रहे थे आप। अरे यूब लाला बहुत सारी दुआएं, जाग रही हूं, खुश रहें। जरीन नूर महानूर और नौरीन महना, हमको याद मालूम एक रुबाब भी है, याद किए हैं हम, तो रुबाब ने आपको जगाए हैं ये भी बताइएगा। और वाह वाह वाह, ये जो हल्का हल्का सुरूर है मुझे बहुत पसंद है, चलो जी अच्छा हो गया, ये इनको गाना भी पसंद है, वेरी गुड। अच्छा, हमारा दिल खुश हो जाता है यार, ये आप लोगों की जो पजीराई है ना, ये दिल खुश कर देती है। हम कोई गाना डेडिकेट करते हैं, आप बोलते हैं अरे मुझे बड़ा पसंद है गाना, तो हमें पता नहीं क्यों खुशी होती। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर आरजे के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि उनको बड़ी खुशी होती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, और माशाल्लाह से आवाज में जल तरंग सा एहसास है, हाय अल्लाह जी। सीमा साहिब को कह रही है जीती रहो, अरे सीमा साहिब जीती रहो, खुशगवार सोबत एक फन है, और खूबसूरत रफाकत एक सलाहियत और ताकत है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। वाह वाह वाह संजू। अच्छा, इनकी कोई ना कोई एक मैसेज ऐसा जरूर आता है संजू के मैसेजेस में, जो आप मेरे दिमाग को जरा हिला देता है, मेरा दिमाग इधर उधर हो जाता है। खुशगवार सोबत एक फन है, हाय हाय क्या जबरदस्त बात है, बहुत गहरी बातें होती हैं इनकी, चार पांच लाइनों में बेहतरीन किस्म का जिंदगी का तज्जिया होता है, और खूबसूरत रफाकत एक सलाहियत और ताकत। अब इसको तंजो मिजाज की जानिब भी मैं ले जा सकता हूं, अगर ले जाऊंगा नहीं, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और आपके और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। फरहान भाई द ग्रेट आ गए, और कहते हैं यार फरहान भाई आपका ये वाला जो काम है ना, मुझे बड़ा अच्छा था जो शुरू वाले मैसेज का, तमाम ही छोटे और बड़े सुनने वालों को, खूबसूरत समातों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम आदाब, उम्मीद करता हूं सब खुश बाश खैरियत और आफियत से होंगे, तमाम ही मोहब्बत पसंद लोगों के लिए कल्बी दुआएं फ्रॉम एबटाबाद। अच्छा, आपके मैसेज बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप अम्मी को सलाम कहते हैं और अम्मी जैसी प्यारी आंटी को सलाम कहते हैं, वो मैसेज मेरे दिल पर ठुकता था, यकीन माने। और आपके मैसेज से मुझे मेरी प्यारी सी आंटी और मेरी प्यारी सी आंटी जैसी आयशा जी जो हैं वो याद आती हैं बहुत। तो आपसे गुजारिश है ये वो पैटर्न चेंज ना करो यार, अम्मी जैसी और अम्मी जैसी प्यारी, हाय सो स्वीट। वो बड़ा मतलब मैं अपने जज्बात की और अपने दिल की बात कर रहा हूँ, वो दिल पर ठुकता था। अच्छा चुटकुला भेजा इन्होंने कि पड़ोसी यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का रास क्या है यार बताओ यार। बंदा कहता है दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाना लगाकर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ।
1: शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। बहुत आला बहुत आला।
0: सवाल का जवाब दिया भाई इन्होंने। और एलसीडी का इन्होंने बिल्कुल फुल फॉर्म सही बता दिया, क्या बात है फरहान भाई। लेकिन एलईडी का तो बताएं, एलसीडी भी अब खत्म हो चुकी है। अच्छा भाई हम लोग बड़े जबरदस्त किस्म फुटबॉल फीफा फुटबॉल जो चल रहा है उसके जो लवर हैं फुटबॉल लवर हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं भाई। और इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूं कि ऑलमोस्ट तकरीबन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है फीफा वर्ल्ड कप और क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो होना शुरू हो चुके हैं। फ्रांस जो है वो पहली टीम है जो जिसने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल। और आज जो मैच है ना भाई बहुत ही धमाकेदार किस्म का मैच है और ये क्वार्टर फाइनल हो रहा है जनाब, और ये है स्पेन और बेल्जियम के दरमियान। दोनों बड़ी खतरनाक अच्छी तगड़ी टीमें और तकरीबन 70 मिनट का खेल हो चुका है, एक एक गोल से मैच बराबर है, यानी 20 मिनट का भी खेल बाकी है और उसमें भी अगर बराबर रहा तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, दो हाफ होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो फिर भी अगर बराबर रहे तो फिर पेनल्टी किक्स पर मैच चला जाता है। तो बड़ा जबरदस्त सा मैच हो रहा है। तो फुटबॉल लवर के मैंने लिए सोचा कि यार उनको बता दे यार फुटबॉल में क्या हो रहा है यार। और एक और बड़ी मजेदार बात आप लोगों खेल के हवाले से, क्रिकेट लवर्स तो खैर पूरा पाकिस्तान है और T20 की सीरीज जो है वो सबसे पहले आयरलैंड से इंडिया हारा, इंडिया के मैचेस की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मैचेस की बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड चला गया इंडिया, 5 T20 उसमें भी बुरी तरह हारा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे हंसी इस बात पर नहीं आती कि इंडिया हार गया, खुश हो रहा हूँ मैं बहुत, मुझे खुशी इस बात पर होती है कि इंडियन मीडिया जो है ना उनकी जो चीखें निकल रही हैं और वो जो जलील हो रहे हैं वो असल में वो जलील हो रहे हैं, इंडियन टीम नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये उन्होंने ऐसे चने के झाड़ पर भाई खिलाड़ी खिलाड़ी है यार, पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो समझते क्रिकेट उनके अब्बू ने इजाद की थी, इंडिया वाले समझते हैं जो उनके मीडिया वाले उनके हवाले से बता दें उनके अब्बू ने और क्रिकेट इजाद की थी, बॉल जो है उनकी पुफी ने बनाई थी, बैट जो है वो उनके जो है पुफा ने बनाया था, और सारे रूल्स जो है वो इंडिया ने बनाए हुए, मतलब वो उनकी बातें ऐसी होती हैं। तो बड़ा दिल खुश हो रहा है भाई, फुल टाइम जो उनके मुंह उतरे हुए। खैर आगे बढ़ते हैं मैसेजेस का जवाब, और फरहान भाई का हमने लास्ट मैसेज पढ़ा था, फरहान भाई के मैसेज के बाद रुबाब आ गए हैं। असलाम आपको और सब सुनने वालों को, मुझे तो भूल गए हो, लो 1 करोड़ दफा आपका नाम आता है बीच में, हम आपका नकल भी उतारता हूँ और अब बोल रहे हम आपको भूल गया हूँ, मतलब आपको याद करने का कौन सा तरीका होना चाहिए, तस्वीर में दाने में बोलते थे रुबाब मेरे बाप मेरे बाप। रुबाब हम आपसे बहुत यू नो जितने भी लिसनर्स हैं उन हम सबका बहुत इज्जत करता हूँ, आपका भी करता हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझे हैं जी ते हैं जी। और मोश खा गई है भाई, क्या बात है मोश, आज कैसे आ गई। अच्छा मुश्क के भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मूड होगा तो शो सुनेंगे नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। चलिए अस्सलाम वालेकुम डेशेंग, क्या हाल है, 2-3 दिन तक आपको नहीं सुना, आपने सुकून की सांस ली होगी, लोगों ने बहुत याद किया आपको, अभी देखो अयूब लाला ने भी बहुत याद किया, अच्छा हुआ जान छुट्टी भूल गए। अरे नहीं ऐसा नहीं है, आपकी ड्रेसिंग जान छोड़ दूं, सोच रही हूँ पूरा शो सुन और लूं, क्या याद करेंगे। ना जी ना ऐसा ना करो मुश्क, तुम क्यों इस तरह का बात करते हैं। मानूर जरी नूर के बेस्ट विशेष अयूब चाचू जीबीएन चाची। अरे आम की बेटी अभी याद दिला रही। अयूब लाला जब तक आप आम नहीं बेचेगा चौसा आम, तब तक मेरी बात छोड़े ये मुश्क आपका जान नहीं छोड़ेगा। तो बल लाला इस हवाले से जरा कुछ बताओ। अच्छा जी, ये जो समी भाई ने बात कही थी ना, मैं फ्रिज के ऊपर वाले खाने तक नहीं पहुंच सकती। तो सीढ़ी ला लीजिए। क्या बात है भाई। वो कहता है बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को नजर बच से बचा करो, बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं गले में लीमू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। वैसे ये बात यार बड़ी मजेगी की है। वो कहता है बहुत खूबसूरत हो तुम, नजरे बच से बचाया करो। अच्छा लोग क्या करते हैं नजरे बच के से बचने के लिए, गाड़ियों में मैंने अक्सर देखा चप्पल लटकाई होती है यार, और लीमू लटकाया होता है, मिर्चे, नींबू और मिर्चे तो मेरे ख्याल ये हिंदू लोग ज्यादा करते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, ये चप्पलें लटका देंगे बच्चे की, छोटी सी चप्पल लटका देंगे, या फिर वो क्या उसको कहते हैं काला कपड़ा बांध देंगे। ये क्या सीन चल रहा है यार, ये इसमें क्या मतलब, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस पर बिल्कुल नहीं करता। डैशिंग हर शो 2 घंटे का होता है, कुछ लिसनर ने फोन को ऐसा पकड़ के लेक्चर दे दिया, बेचारा आरजे खामोश और का जी जी कहते हैं। वैसे ये बात तो है, कई दफा ऐसा होता है जी जी जी जी कर रहे होते हैं। गाने की जाने क्यों ना जाए है भाई, आप लोगों को थोड़ा सा बेचैन करते हैं। बहुत दिनों के बाद ये ट्रैक चला रहा हूँ, एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते हैं जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और ये हल्ला गुल्ला जारी है सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि LED जो कि हर घर में मौजूद होती है, जिस पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, और LED और LCD इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, ये आपने मुझे बताना है 3636 पर। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। लास्ट मैसेज हमने पढ़ा मोश का, और अभी हम जाएंगे जनाब 3636 के और मैसेजेस की जानिब। और अस्सलाम वालेकुम सबको, और नदीम सर नाम है सिकंदर अली, सिकंदर अली हूं मैं, गार्ड हूं क्यों, तेरह साल से मेरा शो सुन रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं, और एक पख्तो परमाइश यारा, सिंगर का नाम है शफा शाह, अच्छा शाह फारूक का गाना है, शाह फारूक के गाने तो बहुत ही ज्यादा भाईजन पसंद किए जाते हैं, हालांकि वो दो दो आवाजों में गा रहा होता है। आपको मैंने देखा तो यहां से गया,
1: अरे वहां गया तो कैसे गया।
0: दो दो आवाज, मैं पहले समझता था कि शाह फारूक के गाने मैंने जो फर्स्ट टाइम सुना ना, मैं समझा कि दो सिंगर गा रहे हैं, मगर वो भाई वाह भाई वाह, शाह फारूक का गाना चलाते हैं भाई। देखते हैं अभी ये जो आपने स्पेशली कोई गाना गाया है, हो सकता है वो वाला ना हो, मगर सिकंदर भाई दूसरा कोई गाना उनका जरूर चलाएंगे, पश्तो का ना कहते हुए से भी फरमाइश हुआ। अयूब लाला आपका गाना अलग होता है, वो आप बेफिक्र हो। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने अपना नाम नहीं लिखा। अच्छा जी, मेरी भांजी भांजे जबरान असलम की बर्थडे थी, आए जबरान शहजादे की, जबरान का नाम बताते क्यों शर्म आ रहे थे अनीस भाई, तो हम जबरान को अभी डेडिकेट करेंगे, गाने डेडिकेट करेंगे, जबरदस्त जिंदगी साथ है आज, अरे जिंदगी आ गई है आज, आपकी आवाज में जिंदगी है, आपकी आवाज में हो जाए कुछ, हाय अल्लाह जी ना करो जिंदगी, एक तो आती हो इतनी तरसा तरसा के, और ऊपर से फिर आते ही फरमाइश हो जाती है कि अपनी आवाज में कुछ सुनाइए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, क्या गाना यार। आपका नाम ऐसा है कि बेतहाशा शेर याद आ जाते हैं, गाने याद आ जाते हैं, और खैर जिंदगी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अयूब लाला कहते हैं संजू शरारती मैसेज किया करो, अगर शरारती मैसेज सीखना है तो मुश्क से मदद ले लो। संजू अच्छे मैसेज करती है, ऐसा बात नहीं है यार, संजू का अपना एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से बात करते हैं, लाला कैस बात करते हैं। अच्छा जी, माह को माहीन को निगत को शेरबानों को जबरदस्त किस्म का गाना प्ले करके दो, हमको पता था कि आप जरूर कहेंगे। अफजल साहब अफजाल साहब लाड़काना नसीराबाद से कह रहे हैं कि आप सर एक सॉन्ग प्ले कर दें मुरातब अली साहब का, यार फरमाइशें फुल टाइम चल रही हैं, अभी आना शुरू हुई है फरमाइशें, वो भी तकरीबन जब एक घंटा जब गुजरने वाला है, और संडे को चौसा आम जिगर के लिए, मुश्क के लिए, आपके लिए, मानूर के लिए, और सबा गुल के लिए लाजमी भेजूंगा। अरे लाला मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाकई में एक रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे लाला जो है वो ये सिलसिलाकार हो, सबसे पहले तस्दीक हो जाए कि ये लोग यहाँ, क्योंकि ये अमानत हो जाती है, और अमानत में हम खयानत नहीं करता, वैसे जो चौसा आम को देखकर दिल करता है कि खयानत कर दो। लेकिन तो ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं, इन जिसमें महानूर है भाई, सबा गुल है, मोश्क है, और चौथा मैं हूं जिगर, तो इन तीन के लिए जब तक ये कंफर्म नहीं करें कि यहाँ से आके ये पिकअप करवा लेंगे, तब तक मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे लाला का नुकसान हो किसी भी तौर पर। हाँ, मेरे लिए अगर आप दो चार पेटी भेजना चाहते हो तो भेज दो। मैं तो यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। मुश्क और महनूर और गुल सबा गुल, आप लोग बता दीजिए, हमारे लाला ने अब भी वादा कर लिया है। और कंजूसी कुफराने नेमत है, सारे लिसनर्स ज्यादा से ज्यादा मैसेज करो यार, लाला आई लव यू यार। और के एन ए बोले के बस भाई, इतने सारे मैसेजेस। अच्छा, इतने मैसेज करो के एने बोले कि भाई जान इतना मैसेज। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, मेरा गला खाशक हो जाता है वैसे, अक्सर ऐसा ही होता है। और वेरी नाइस शो नदीम भाई, मंसूर अली जीटीके से। मंसूर भाई कैसे हैं यार? एक गाना आपको सुनाऊंगा मंसूर भाई जीटीके का। और अनीस भाई आपने क्या लिखा यार? अच्छा, अब समझ गया क्या लिखा है। ओ भाई स्पेन ने गोल मार दिया भाई, मेरे को पूरा यकीन था कि स्पेन जीतेगा, वैसे मैं स्पेन के साथ था, बेल्जियम और स्पेन का मैच हो रहा है। तो अनीस भाई कह रहे हैं कि भाई एतमाद रूह की तरह है, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। इंसान जो है बेशक एतमाद करता है, और बेतहाशा लोगों को उनके एतमाद को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनकी उम्मीदें बड़ी ज्यादा वाबस्ता होती हैं, उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता कर लेता है सामने वाले से, और एतमाद भी करता है, और जब उसके एतमाद को ठेस पहुंचती है तो दिल बहुत दुखता है। फिर उसके बाद सिलसिलेकार ये होता है कि वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर एतमाद करते हुए बहुत एहतियात बरतता है, और हर पांच उंगलियां तो बराबर नहीं है, और इसमें फिर एक गलती हो जाती है अनीस भाई, कि जो काबिले एतमाद इंसान होते हैं ना, इंसान उनको भी खो देता है। खो देने से मुराद ये है कि जाहिर अब आप एतमाद ही नहीं कर रहे हो किसी पर। तो जिंदगी के जो तल्ख तजर्बात होते हैं जिसमें आपके एतमाद को भरपूर तरीके से ठेस पहुंचे, तो वो शख्स बड़ी मुश्किल से ना होने के बराबर किसी पर एतमाद कर पाता है। तो ये थी आपके इस मैसेज पर चर्चा। मेरे बाप आ गए हैं और कहते हैं मुश्की और सलीम मेमन भाई आपको अस्सलाम वालेकुम, मैं शो सिर्फ आप तीन लोगों के लिए सुनता हूँ, समझ रहे हैं ना एने बादशाह। जीती रहे, मुस्कुराती रहे, शाद रहे, आबाद रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीर बाब आपका, सो नाइस ऑफ यू। अफजल लाड़काना वाले जो हैं वो कुछ और भी कह रहे हैं, नदीम भाई कैसे हैं आप? सॉन्ग मरे ये दोबारा कर दिया हमने, मुरातब अली का दोबारा से मैसेज कर दिया। मुरातब अली को ढूंढना पड़ेगा भैया। हाँ जी, उनका एक गाना बड़ा मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाला को मेरा सलाम, शो भी सुनना शुरू किया है। सबा गुल आ गई है, सबा गुल अभी लाला ने जो बात की उस हवाले से जवाब जरूर दीजिएगा। फौरन से पेशतर इधर बढ़ते हैं जनाब। डैशिंग प्लेलिस्ट जबरदस्त A1 शुरू से एंजॉय कर रही हूँ। आज तो आपकी आवाज का जादू चलना चाहिए। लो जी, जिंदगी के साथ साथ बंदगी भी आ गई, यानी कि जिंदगी बंदगी में रदीफ काफिया बनाया, वैसे ऐसा नहीं है। मुश्क भी ने भी ये फरमाइश कर दिया, दो हो गए, कम से कम तीन वोट होने चाहिए यार। संजू क्या कहती हैं? संजू अरे नहीं, संजू नहीं है, ये हमारे यासिन खान है, दिल पर जान दा सुखाना। और कह रहे हैं सलाम भाई जान संग यार औखाना नदीम खान पखेर रख ले। और कह रहे ये बताए नदीम भाई कि यार पहले अंडा आया था, ये मुर्गी आई थी इस दुनिया में। और अंडे में और मुर्गी में क्या फर्क है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब बहुत आसान सा दे सकता हूँ कि पहले अंडा आया था, ये मुर्गी आई थी। इन दोनों से पहले एक चीज आई थी, उसका नाम था मुर्गा। यानी कि समझ रहे ना, मुर्गा आया तो मुर्गी आई, और फिर अंडा आया, अंडे का फंडा। یاسین خان نے سمجھا تم یا نہیں سمجھا؟ سنجو کا میسج تھا جناب, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں

0: हम भी नहीं नहीं कुछ ऐसा लगे जबरदस्त ऑन या नहीं ओके कभी सोचा है हम पढ़ देते हैं ये फेसबुक एक तजस्सुस की दुनिया है जब तक किसी का चेहरा देख ना लो तजस्सुस बाकी रहता है कुछ लोगों का इंतखाब बहुत खूबसूरत होता है चाहे वो मजाहिया हो या शायरी या कोई दिल छू लेने वाली तहरीर लोग उस इंतखाब से ही मुतासिर हो जाते हैं और एक है नाम सी कशिश फिर ये कशिश किसी ताल्लुक का मौजद बनती है और बात होते हुए होते तस्वीर देखने दिखाने तक पहुंच जाती है लेकिन जब तस्वीर किसी की तवक्को के मुताबिक नहीं होती तो वो तजस्सुस उसी वक्त खत्म हो जाता है तजस्सुस खत्म ताल्लुक खत्म अजनबियत एक राज है और राज हमेशा पुरकशिश लगते हैं अजनबियत ही रहे तो अच्छा है आए हाय क्या राय है आपकी आपने तो कमाल कर दिया है और एक ऐसे इशू को छेड़ा है जो कि बहुत ही खतरनाक है फेसबुक के हवाले से और संजू आपसे एक रिक्वेस्ट है ये बात मुझे शो के तकरीबन इख्तिताम पर याद दिलाइएगा इस हवाले से मेरे अपने ख्यालात का इजहार करूंगा यानी कि समझ रही है ना मैं नहीं चाह रहा कि अभी मूड शूट सबके अजीब से हो जाए और लाला मुश्क मारेगी कि अगर उनका अंदाज अपनाया तो आप बचा लेंगे क्या नदीम मालूम है आपको लाला मुश्क से भी 10 हाथ आगे हैं इस कदर मजाक करते हैं कि हंस हंसकर बल पड़ जाते हैं पेट वाह वाह वाह ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बहुत जिंदा दिल इंसान है ये और जिंदा दिल के साथ साथ नर्म दिल भी हैं डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं और मैं ये समझता हूँ कि क्या बात है लव यू लाला हैं जी ते हैं जी ओके टेक अरे ये संजू ने हमारा जुमला पकड़ा है भाई ओके टेक वाला इरफान मेहमान आ गए स्वीट सुने को मासूम से करीब से बच्चे का सलाम कबूल हो ऑल कजन्स और एफएम की पूरी फैमिली को उन्होंने सलाम कहा एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है मुर्गे का क्या नाम था हाँ जो पहला मुर्गा था उसका नाम क्या था मैं बताता हूँ अभी आपको अरुषा सिस्टर भी आई हुई हैं शो सुन रही हैं और आपको सलाम बोल रही हैं आए स्वीट सी ये अरुषा मेमन लिखा करो पूरा हमारी एक और गुड़िया अरुषा जो है हमें वो याद आ जाती हैं तो अरुषा मेमन लिखा करो आप भाई अरुषा मेमन कैसी हो लाला को उन्होंने सलाम कहा है हमारे सलीम मेमन ने और जरीन नूर कहाँ है आ जाओ भाई संजू कह रही है यानी कि समझ रहे ना यासिन खान दिल भर से आना कह रहे मुर्गा कहाँ से आया ये भी बताओ भाई मुर्गा कहाँ से आया अब ये मैं क्यों बताऊं मैंने थोड़ी बनाया मुर्गा वैसे तो मुर्गा तुम में भी है यासिन खान टांगों के बीच में से कान पकड़ो यकीन मारो और फिर बोलो फिर मैं बताऊंगा वो मेरे बाप क्या कह रहे हैं नदीम आप मेरा जान है नदीम जख शुमा खौल खूब खूबी अयाज और तुम दोनों मेरा जान मालूम है हमें बहुत अच्छी तरह मान जाओ मन मन हम मेश तुमको मालूम साथ रहता हूँ मालूम जी जी बिल्कुल आपका मैसेज नहीं पढ़ा उम्र रुबाब बिल्कुल पढ़ रहा हूँ आपके मैसेज सबके पढ़ रहा हूँ असल में वजह यह है कि देखें मैसेज तरतीब से ही पढ़े जाते हैं ना तो बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं हो सकता है किसी को ये शिकायत हो यार मैंने इतनी देर होगी मैसेज किया नदीम भाई मैसेज क्यों नहीं पढ़ा तो नदीम भाई के पास सिर्फ आपका मैसेज नहीं आ रहा बेतहाशा मैसेजेस आप लोगों की मोहब्बत में आ रहे होते हैं तो जाहिर है मैं वो सीक्वेंस से पढ़ूंगा जैसे वो मैसेज सामने आ जाए तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ उम्र रुबाब आप समझिए हैं नौरीन तौसीफ मेरे धन आ गई है करिए अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई जान नदीम के प्यारे भाई नदीम के मिजाज शरीफ कैसे हैं ओके ठीक ढेरे दुआएं दिल से आई दरअसल सो गई थी अभी अभी आंख खुली है और आपके शो में हाजिर हो गई अरे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हसीन समाधों को और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ढेरे दुआएं कहाँ गायब थे हाय इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में जिंदगी की रेल फेल ऐसी होती है के हाँ समझ गई ना। हाँ यासिन खान बस दांत दिखा रहा है भाई अभी तो। यासिन खान लगता है भाभी अभी आई नहीं है इसीलिए मेरा शो सुन रहे मेरा शहजादा। और जनाब उमर उबास इस मेमन भाई बोलती हैं, ये हमारे इरफान मेमन, और क्योंकि आज मेरा भांजी आयत की भी बर्थडे, तो भाई आपकी भी आयत की भी बर्थडे और वहां पर एक भांजे की भी बर्थडे, हम इन दोनों को गाना डेडिकेट अभी करते हैं वरना मैं भूल जाऊंगा। अरुषा मेमन इस वजह से आई हुई है, अरे सो स्वीट, वाह भाई वाह भाई वाह। तो एक तो हमारी आयत जो है ना प्यारी सी शहजादी, उनकी बर्थडे है, और हमारे प्यारे से अनीस भाई जो है उनके भांजे की भी बर्थडे है, तो दोनों को ट्रैक, उनके भांजे का नाम जबरान है, जबरान बड़ा खूबसूरत नाम है, तो इन दोनों को गाना कौन सा डेडिकेट करे यार, इन दोनों के हिसाब से गाना होना चाहिए ना, बर्थडे। मेरी सालगिरह है बोलो बोलो ना बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। चले कोई भी गाना चला देंगे लेकिन इनको बर्थडे विश कुछ इस तरह करेंगे।
1: मुबारक है, ताली बजा रहे
0: हैं भाई, मुबारक
1: 100 साल जी तो।
0: हाँ जबरान
1: बेटे खुश रहे बेबी,
0: और आए ईद मुबारक, सॉरी सालगिरह मुबारक।

0: அம்மா ஆயிட்டு ஆயிட்டு ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே
1: भैया आयत को और जिब्रान को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत प्यारे अच्छे करे, यानी कि समझ रहे हैं ना,
0: इशारा तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने वो गाना ढूंढो दोनों के लिए, इससे बेहतर यही है भाई हैप्पी बर्थडे वाला गाना चला दो यार। चले इसी बात पर हम आपको लेके जाएंगे एक और गाने की जानिब, और जब प्यार होता है तो फिर ये गाना सुना जाता है। हेलो फड़ोगे

0: अच्छा जनाब, आप लोगों ने मैसेजेस जो आपके आप बहुत सारे आ रहे हैं और फरमाइशें भी बहुत आ रही हैं, उनको ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है आप यकीन मानिए जानते नहीं हैं अभी। खैर, मैं मैसेजेस की जानिब जा रहा हूं। अनीस भाई कह रहे हैं, अनीस भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, वाकई में मजा आया यार, दोबारा हो गया, अच्छी बात है यार, बस दिल को आपकी खुशी हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बस यही बहुत है हमारे लिए। सलीम अमन भाई कह रहे हैं, सलाम छोड़ो, सुनने में आया है कि आप बहुत प्यारे लड़के हो, तो बताइए इतने और उतने कितने होते हैं, जिनके जितने होते हैं उनके उतने उतने होते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। कोई भी सॉन्ग संजू को डेडिकेट कर दें। हाय मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर आ गई, जरीन नूर तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे नाम से हमने संजू को ट्रैक डेडिकेट किया, मगर अब आप आ गई हैं तो हम एक और गाना डेडिकेट करेंगे, यानी कि समझ रही हैं ना। लाला कह रहे हैं कि सबागुल मैसेज आया, खुशी हुई, सबागुल सखावत वाली है, जिनमें सखावत होती है अल्लाह उनको देता भी है बेशक। लाइट नहीं आ रही थी, शो देर से सुना, जरीन नूर कह रही नो प्रॉब्लम, और मेरे वालिद मोहतरम को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम भी गाया, वालेकुम अस्सलाम, और दिल में तो सब रखता है, मैं तुम्हें फर्ज में रखूंगा, फराइज में रखूंगा, ताकि तुम करीब ना हो जाओ। वाह वाह सलीम अमन भाई, समझ में नहीं आया। और अयूब लाला कहते हैं कि संजू खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आपको मालूम
1: नहीं? मालूम क्यों नहीं मालूम।
0: अच्छा जी, अनीस कह रहे हैं कि भाई मैं भी मुश्क और जिंदगी के साथ हूँ। ओए ओए, हो गई भाई जनाब, ट्रिपल फरमाइश हो गई, तो अब कोई ना कोई गाना तो गाना पड़ेगा। सबा गुल ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, आपने आम का कहा यही काफी है मेरे लिए। नहीं, मेरे लिए नहीं भेजिए लाला प्लीज, मैं नहीं ले सकती हूँ। सबा गुल भाई, एक पेटी कम करवा दी है लाला मैंने, अब जितनी पेटियां कम हो रही होंगी ना लाला, बस मेरी वाली पेटी में दो दो आम उसके ना बढ़ा दे रहे। मानूर गरीब बाब, आपको और लाला चौंसा आम वाले को, सलीम फालूदे वाले को, सलीम बिरयानी वाले को, और मुश्क को बोले अस्सलामु अलैकुम, फखर रागले असरे मशीन वेलकम दास योगान। लाला ने एलईडी का बिल्कुल सही जवाब दे दिया। लाला तो आप तो बड़ा जबरदस्त जा रहे हो। ओके ठीक जा रहे हैं यार, जनरल नॉलेज में लाला इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये बताओ शोज की वजह से। और अफजाल भाई का, अफजाल भाई आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी यार, ये मैं लिख भी लूं, नाम जेन जेना निकल जाए ना, जब मैं फरमाइश कर रहा था फिर मुझे मैसेजेस स्क्रॉल करके देखने पड़ते हैं। हैं जी ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं भाई जान, किसका मैसेज आए, मैसेज स्क्रॉल हो गए। खैर, हमारे एक और भाई का मैसेज था, सिकंदर भाई ने पख्तो संदरा का बोला था ना, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आप सबके लिए चलाए गए, सिकंदर भी नाम लिख देना, ताकि यार कुछ नाम ऐसे जो नए आते हैं हमारे नए लिसनर्स, तो उनके नाम जो है वो फौरन जहन में नहीं रहते, तो उनके नाम पुकारने के लिए फिर सारा कुछ देखना पड़ता है। हाय गला खाशक हो गया। और ये भी मैसेज हो गए थे जनाब, ये वाला मैसेज आया है, सलाम भाई मैं राफिया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ राफिया का, काफी दिनों के बाद मैसेज आया, करिए युब भाई को भी मेरी तरफ से बेशुमार दुआ सलाम और बहुत सारा प्यार। अयूब भाई मेरी तो दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। कितने दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी, हाय मेरी आवाज सुन रही हो ना, ہاں جی اور آگے بڑھیں اس طرف بھی آ جاؤ ندیم اختر یہ مرزا صاحب آگے نے ساڈے مرزا صاحب ہینڈل اپ آپ نے کر دیا تہاڈی حاضری لگ گئی ہے یہ ہمارے گجر خان سے ہمارے مرزا صاحب ہیں اور سب کو انہوں نے آداب کہا ہے مجھے سلام کہا ہے تین چار شو کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کی انرجیٹک آواز سن کر ہم چارج ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہوئی نا بات تھینک یو فار کمپلیمنٹ ایل سی ڈی کا فل فارم اوکے ایل ای ڈی کا بھائی پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا شو سنتے رہیے گا اور انڈین میڈیا کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے دل وچ ٹھنڈ پا دیتی ہے ندیم بھائی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور صحیح نقشہ کھینچا یا نہیں کھینچا یار یہ بتاؤ مرزا صاحب کاش انڈیا میں کوئی ہٹلر جیسا ہندو ہوتا جو ان کی میڈیا کو پکڑ کر چترول مارتا دیکھیں میڈیا بھی عکاسی کرتی ہے بھائی وہ سب ایسے ہی ہیں مطلب ان کے دماغ ہی حاضر نہیں ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ اچھا کچھ لوگ بھی ملیں گے آپ کو ایک تو ہوتا نا کہ ایک امیر آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہوا ہے اور اس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے گاڑی بھی ہے اور ایک سے ایک کپڑے پہن رہا ہے ٹھیک ہے نا یا پہن رہی ہے تو وہ اگر اکڑ کے چلے گا نا یہ چلے گی تو آدمی سوچتا بھی ہے یار بھائی پیسہ ہے یار اکڑ تو آئے گی نا بھائی ٹھیک ہے نا تکبر تو آئے گا نا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیب خالی ہے فل ٹائم خالی ہے گاڑی بھی نہیں ہے کوئی ایسا آپ بہت امیر بھی نہیں ہے لیکن ان کی اکڑ ایسی ہوتی ہے مطلب ان کے سامنے والا دیکھ کے بس ہنس ہی سکتا ہے جیسے میں ایسا ہوں ان کی اکڑ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی بھائی کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ایسے لوگ ٹکرائیں گے بھی آپ کو ضرور بتائیے گا مجھے

अच्छा जनाब, अभी हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं। कहाँ गया वो ट्रैक है? ये रहा हमारे प्यारे से बिरयानी वाले सलीम भाई ने, सलीम बिरयानी वाले ने कहा था अंग्रेजी गाने की फरमाइश की, तो आपकी फरमाइश जनाब किथे गई? ए ए ए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने शहरी शहरी लेडी मॉडर्न टॉकिंग किसी दौर में बहुत ही पॉपुलर बैंड होता था ये उसका ट्रैक है जो कि हमारे सलीम बिरयानी वाले ने फरमाइश की थी और बिल्कुल सही बताया एलईडी का भी फुल फॉर्म हमारे प्यारे से फरहान भाई ने और एक नया तोहफा जो है वो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये तोहफा आपने अभी सिर्फ बताया है मैं अभी भुगत के आ रहा हूं। पेट्रोल में जो है 13.18 रुपए का इजाफा किया है और डीजल में भी 13.80 रुपए का इजाफा किया है। अच्छा एक चीज मेरी समझ में नहीं आती इस हवाले से मैं अपने तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस हवाले से थोड़ी सी कैंपेन निकालिए। हमारे पास जो पेट्रोल की कीमतें आती हैं उसमें तमाम टैक्सेस और लेवी और एवरीथिंग शामिल होता है जो कि हुकूमत ऐलान करती है कि जी आपका पेट्रोल इतने का। अब जैसा कि मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूं कि 13.18 रुपए की पेट्रोल में इजाफे के बाद जो है पेट्रोल की कीमत जो हुकूमत ने बताई है वो 310.71 रुपए हैं। तो यानी कि अगर आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो 310.71 रुपए की बजाय आपको जाहिर है 311 रुपए में ही पेट्रोल डलेगा। अब 11 लगा लीजिए ठीक है तो 310.71 रुपए। अब मैं पेट्रोल डलवा कर आया हूं अभी जो कि 311.71 रुपए है या 60 पैसे या 70 पैसे मतलब ये जो कीमत है ये दुरुस्त है ये जो पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल दे रहे हैं वो दुरुस्त है। अब ये 1 रुपए का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए का जो टैक्स है ये किस चीज का है क्योंकि हम लोगों में एक चीज है अवाम में इत्तेहाद नहीं है एक दूसरे के मतलब बस भाई मिसाल के तौर पर कोई एहतजाज कर रहा है सही बात पर उसके ऊपर कोई दूसरा उसके साथ खड़ा नहीं होता। अगर पेट्रोल पंप पर मौजूद तमाम गाड़ी वाले या मोटर बाइक वाले रिक्शे वाले ये सब उनको पकड़ लें कि भाई तुम 310.71 रुपए काटो हम 311 रुपए ये नहीं देंगे ठीक है ना तो कुछ बात बने मगर ऐसा होता ही नहीं है। हर कोई जो है वो अपनी अपनी देख रहा है या शेख हाय दिल दुखा दिया यार फरहान भाई आपने अच्छा खासा मूड चल लिया था हैं जी ते हैं जी। अच्छा जी एक सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए इन्होंने कहा है और कोशिश करूंगा भाई मिल गया और डेडिकेट करना किसको चाह रहे हैं कि समी भाई को सलीम बिरयानी वाले को और सलीम भाई फारूदे वाले अरूसा को संजीदा को अनवर पिताफी भाई और अयूब लाला और तमाम सुनने वालों को और एक जो शेर है वैसे तो उन्होंने और शेर भी भेजे मैं पढ़ूंगा नहीं वो लेकिन जो मजाइया थोड़ा सा शेर है वो पढ़ लेते हैं। कहते आम तेरी ये खुश नसीबी है वरना लंगड़ों पर कौन मरता है भाई मैं इसीलिए लंगड़ा नहीं खाता है चौंसा सही है अयूब लाला इसी बात पर जनाब आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही जबरदस्त है पख्तूर संदरा की जानेब और ये ट्रैक जो है ये हमारे सिकंदर साहब जो है गार्ड पश्तो गाने की उन्होंने भी फरमाया यासिन खान दिल पर जाना तुमको ये वाला गाना नहीं करेगा आगे वाला नेक्स्ट वाला गाना डेडिकेट करूंगा जो अयूब लाला ने डेडिकेशन करनी है ना वो वाला गाना आपको भी पसंद आएगा। तो ये गाना स्पेशली सिकंदर भाई और मेरे 2-3 और पख्तून भाई हैं जिन्होंने फरमाइश की थी वैसे तो बहुत सारे सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट करेगा उन्होंने बोला था यार शाह फारूक का गाना चला गया

Welcome back, hanging it to now, what's up, cool? इस तरह के होते हैं इस तरह के कामों में. और आपने सुना हमारे प्यारे शाहरुख को नौरीन मेहना क्या कह रही है. नौरीन मेहना ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिए. होना था प्यार नदीम भाई, ये सॉन्ग आपने अपनी आवाज में गाना है और संजू को डेडिकेट करना है. मैं एक और गाना गाऊंगा, संजू को डेडिकेट कर दूंगा. होना था प्यार तो मैंने अभी चला दिया, इसलिए वो तो नहीं चल सकता. ये सॉन्ग दो लोग गा रहे हैं नदीम भाई, ये दो लोग नहीं गा रहे, ये एक ही गा रहा है. इसका नाम है शाह फारूक. अब जैसे मैं आपको सुनाता हूँ. होना था प्यार हुआ मेरे यार.

शाहरुख का ये जबरदस्त टैलेंट है, यानी कि समझ रही है ना आप। और जनाब आपके मैसेजेस जो कि 3636 पर इंतजार कर रहे हैं उनकी जानिब जाएंगे। राफिया का मैसेज हो गया था, अच्छा ये चुटकुला भेज दिया सलीम भाई ने। भाई एक तो हमारी भेजती है मुश्क और एक हमारे सलीम भाई, ये वैसे चुटकुलों पे फुल टाइम जो है रोशनी डालते हैं और हल्का सा मिजाह जो है वो शो में शामिल हो जाता है हमारे। आज तो फरहान भाई ने भी भेजा था, कह रहे शोहर ने बीवी ने शोहर से कहा कि मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूं।

वेलकम बैक। जय तो कभी रावी लग जाए। संजू कहती हैं नौरीन बहना को बता दें याद किया था। बेशक भाई, बहुत ही शिद्दत, मोहब्बत, प्यार, एहतराम के साथ संजू ने आपको याद किया था, मगर तुसी भी गायब सुना। हैं जी, जे हैं जी। अच्छा जी, बिल्कुल होना था प्यार हुआ मेरे यार। जबरदस्त सॉन्ग, क्यू शीट, दिलकश। हाय अल्लाह जी, काफी देर से मैसेज पड़ा इस तरफ। आप सबको ही पता है कि प्रिफर जो है हम करते हैं इसको, और उसके बाद आप लोगों की मोहब्बत जो है वो यहां से भी समेटता हूं। और कहती है कि लाला रंग तो खरबूजा पकड़ता है, मगर मिठास कहां से लाएंगे खरबूजी की। आए करी पानी या चाय भी दीजिए। पानी तो पी रहा हूं, चाय आज कहीं नजर नहीं आ रही है। संजू चाय बनाकर भेज दो जल्दी से। हैं भाई, ते हैं भाई। लाला क्या कहते हैं? लाला कुछ नहीं कहते हैं फिलहाल। यहाँ पर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं संडे को आप गए और मुश्क चौसा हम आ जाएगा यार। और नदीम भाई मेरे पास टच मोबाइल। अच्छा साहब, ज्यादा का ये मैसेज तो हो गया था। और अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपका शो माशाल्लाह से बेहतरीन है। आज भी आप ऑनलाइन नहीं आए। नवाज गबोल साहब हमारे प्यारे से शहजादे। नवाज भाई, बात दरअसल ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शो में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, लाइव आ जाता हूँ। जरीन को, संजू बेवफा को सलाम। अरे उमर भाभी, आप क्या कह रहे हैं? संजू आपको हमेशा याद करते हैं, अभी भी मैसेज में उन्होंने याद किए हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। हैं जी, ते हैं जी। अच्छा भाई, रावी तो आपको हमने सुना दिया है, और अब जो है वो हमारे अय्यूब लाला की फरमाइश जो है ना वो हमने पूरी करनी है। हैं जी, तो भाई ये ट्रैक जो है अय्यूब लाला की जानिब से जीबीएन को, महिंद को, निगत को हम डेडिकेट करता है, और अपनी जानिब से यासिन खान दिलवर जैना को करता है। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी फरमाइश जिन्होंने ये आवाज सुननी थी उनकी फरमाइश पूरी हुई। अच्छा जनाब, अब फौरन से बेशतर बढ़ते हैं कि जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब ऑलमोस्ट सबने अच्छा दिया, लेकिन उससे पहले तारीफ में अपनी जो है आई है मीसी जाया उसको पढ़ लूं, मैं खुश हो जाऊंगा। हाय, आपकी आवाज ये सॉन्ग दिल ले लेता है सच्ची में, सो जान फिदा। अरे आप इस तरह की बातें मत किया करें संजू, क्षमा आया जी है। और अय्यूब लाला क्या कहते हैं, लाला कुछ कहते हैं, अच्छा गुड सॉन्ग था। और सुने हो आपके लिए अनीस भाई कह रहे हैं कि सर दिल खुश कर दिया आपने आवाज सुना के, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, सो नाइस ऑफ यू। मुश कह रही है चाचू थैंक्स। और खैर अभी सवाल की जानिब जाएंगे, फरहान भाई का भी मैसेज आया हुआ है, अलीमुद्दीन साहब का भी आया हुआ है, यासन खान दिल पर जान दास खाना का भी आया है, नौरीन का भी आया हुआ है, इरफान मेमन, आप सबके मैसेजेस रीड होंगे। बट पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने सवाल किया था कि आपने ये बताना है कि LED और LCD का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही आसान सा है कि LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का ज्यादातर लोगों को नहीं पता था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका दुरुस्त जवाब दिया, हमारी नौरीन महना ने भी दिया और हमारे फरहान भाई ने भी दिया। इसको क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया बटन, जी बैकग्राउंड ही गायब हो गया था। खैर LED का ज्यादातर लोगों ने जवाब नहीं दिया, LCD का तो दे दिया था, लेकिन LED के भी जवाब आए और दुरुस्त आए। ये है जनाब लाइट एमिटिंग डायोकोड, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि मैंने आपको बताया है। हमारी प्यारी सी सीमा साइम जो है वो इंतजार कर रही होंगी कि हमारा फरमाइश पूरी नहीं हुई है, अफजाल साहब भी इंतजार कर रहे होंगे, आप दोनों की फरमाइश जरूर पूरी होगी, डोंट वरी। मैं जरा मैसेजेस मुख्तसर पढ़ लूं और फिर आपके आगे पीछे गाने चल जाएंगे। और हमारे इरफान मेमन ने थैंक यू कहा है, यासिन खान है दिल पर जाना कहता है, नदीम भाई अच्छा सुनो संडे शाम चलते हैं, गुज्जर निहारी बहुत जबरदस्त निहारी होती है, आओगे, आए सो स्वीट यार, थैंक यू। ये होती क्या है वैसे गुज्जर निहारी, क्या ये गुज्जर जो होते हैं वो ज्यादातर जो पॉपुलर हैं, ये एक कास्ट है और ये पॉपुलर है, दूध जो है ये मुहैया करते हैं गुज्जर, तो अब ये कह रहे हैं कि गुज्जर निहारी, मैं निहारी में दूध शूट डालते हैं कई, और तरके वाली निहारी है यार, यासिन खान है यार, मुंह में पानी आ गया, एक बिरयानी और एक निहारी, वाह वाह वाह। और लाला आपकी एक बहन फैसलाबाद में भी रहती है, इधर भी तो चौसाम भेज, हाय सो स्वीट, मैं भेज देता हूँ आपको नौरीन बहना, नो प्रॉब्लम। और संजू मुझे यकीन है आपने मुझे याद किया होगा, जीती रहे और मुस्कुराती रहे। और हमारे अलीमुद्दीन जो सबसे साहब ने शुक्रिया अदा किया है। अब जो है हम बढ़ते हैं एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जनाब डेडिकेट करते हैं हम सीमा साइम की जानिब से सबको, और खुसूसी तौर पर उन्होंने बहुत सारे हमारे लिसनर्स का नाम लिया था, अब वो मैं मैसेज ढूंढूंगा तो पता चलेगा, लेकिन इसमें मेरे ख्याल संजू भी थी, सबा गुल भी थी और अरूसा भी थी, बहुत सारे नाम थे, और उन सब के लिए भाई सीमा साइम की जानिब से ये गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको जब तुम ना हो तुम ना हो ये ट्रैक का टाइटल है और अशर वजाहत ने गाया है उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा नए सिंगर्स हैं अप्रिशिएट किया करें हाय आपका मूड भी बहुत अच्छा है आप संजू यानी ये समझ रही है ना अफजाल साहब लालकाना से कह रहे हैं नसीराबाद से कि नदीम भाई कैसे हैं आप प्ले मेरा गाना प्ले कर भाई आपका गाना अभी बस आखिर में वही प्ले होगा डोंट वरी उम्मे रुबाब आ गए हैं और कह रही है मुश्किल और सलीम मेमन आपको अस्सलाम वालेकुम मैं शो सिर्फ आप तीन लोगों के लिए सुनता हूँ यानी कि समझ रहे हैं ना आप एने बादशाह हाय सो स्वीट थैंक यू सलाम की बात करी कैसे हैं आप लाला को मेरा हाँ ये तो पुराना मैसेज है भाई किधर गया हाँ मैं वही देख रहा था ये स्क्रॉलिंग से नीचे चला गया था और सुने हो आप कहे तो आपका आम का पार्सल भी लाला से लेकर आ जाऊं सलीम मेमन भाई आपके लिए दिल जान हाजिर है यार आपसे बढ़कर है यार जब तुम नहीं है इसका टाइटल है तुम ना हो यानी कि समझ नहीं है ना चलो सुने हो अब आपसे चाहेंगे इजाजत अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक जो है मुरादाब अली की आवाज में हम चला रहे हैं अफजाल साहब की फरमाइश थी और ये गाना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक ये अपने दौर का बहुत ही मशहूर ट्रैक है और इस पर इंडिया ने नकल भी की थी और मुरादाब साहब ने क्या गाया था उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा आएगा और जाते जाते बस ये कहूंगा कि हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करें अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है अगर हम उसका शुक्र अदा करते रहें और उस नेमत की कदर करना शुरू कर दें तो क्या बात है एक बहुत जबरदस्त सी बात भी है मैं कोट कर दूं आपको कि हमेशा अपने से नीचे को देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो आप गिलाई करोगे शिकवाई करोगे और कुछ नहीं करोगे इस नोट के साथ ही अल्लाह हाफिज़

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: ताकि खुदा उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला दे।
2: वमा